0: कुछ उनके सुने, कुछ अपनी कहें। आइए दीवान खाना में चलें।
1: ये है आपका अपना प्रोग्राम दीवान खाना। आपके मेजबान हैं खलील शिराजी, वसीमा आबिद और खदीजा शाह।
2: प्रोग्राम दीवान खाना में तमाम सामईन को आदाब। सामईन की अपनी महफिल में सामईन का इस्तकबाल करते हैं।
1: आज की महफिल में शामिल है एक इंटरव्यू और एक खास ऐलान।
0: लेकिन सबसे पहले है इंटरव्यू।
2: NHK के नए माली साल से हमारी उर्दू सर्विस में एक नए मुतरजिम सैयद शबर हुसैन शाह शरीक हुए हैं। आज खलील शिराजी साहब महफिल में दीवान खाना में उनका शानदार इस्तकबाल कर रहे हैं।
1: जी शबर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। दीवान खाना में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। शुरू में मैं आपसे ये पूछूंगा कि जापान आपका कैसे आना हुआ और कब आना हुआ?
3: जी, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपने मदद किया। मैं मास्टर स्टूडेंट था और हायर एजुकेशन के लिए डिफरेंट कंट्री को टारगेट किया हुआ था कि इस कंट्री में जाऊंगा और उस कंट्री में। जापान जो था बड़ा मतलब एक तरह से कम्पिटिटिव एग्ज़ाम था जिसके ज़रिए मैं आया इधर। मैं उस पे काफ़ी ट्राई की, एक साल पहले भी की थी, दूसरे साल जब किया तो लकीली मेरा एडमिशन हो गया इधर जापान में।
1: सब्जेक्ट आपका कौन सा था और एग्ज़ाम कौन सा था जिसके लिए आप तैयारी कर रहे थे?
3: मेरी एजुकेशन तो एग्रीकल्चर के रिलेटेड और उसमें सॉइल साइंस से मेजर है। मैक्स स्कॉलरशिप है जिसके थ्रू हम आए थे। उसका एक इंटरव्यू होता है और उसके डॉक्यूमेंटेशन होती है, अगर वो क्लियर हो जाए तो देन आप आ सकते हैं और स्कॉलरशिप पे।
1: तो स्कॉलरशिप में आपको क्या क्या चीज़ें?

0: हुकूमत की तरफ से मिलती है, या मेरे ख्याल में हुकूमत जापान की तरफ से सर?
1: जी, ऐसे ही ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। आपको एक स्टाइपन देते हैं, उसमें आपने सारा अपना लिविंग भी कर सकते हैं, और बाकी ट्यूशन फी वो सारी एग्जेम्पशन होती है।
0: अच्छा, तो इस स्कॉलरशिप में यानी कि आपके कोई दबाव नहीं है, आप आसानी से आपके अखराजात पूरे हो जाते हैं स्टाइपेंड से?
1: हाँ जी बिल्कुल, ऐसे ही है। मतलब कि जब वहाँ की इनकम और उस लिहाज से अखराजात भी हैं, तो इधर की स्टाइपन वो ऑलरेडी ये सारा कुछ कैलकुलेट करके देते हैं। हाँ, ये रिसेंटली 1-2 साल में काफ़ी महंगाई हो गई है उस पे। अभी मतलब जितना स्टाइपन है, शायद थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन अभी भी गुजारा कर सकते हैं आप जितना वो स्टाइपन देते हैं ना।
0: अच्छा, तो आप उसमें अपेयर हुए और उसमें कामयाब हुए, उसके बाद जापान आए, तो कहाँ पे दाखला लिया और क्या करना चाह रहे थे? मास्टर्स, PhD, MPhil, क्या?
1: जी, मैं नागासाकी यूनिवर्सिटी में आया था और PhD के
0: किस साल
1: लिए,
0: की बात है?
1: ये 2021 2021 में।
0: अच्छा,
1: मैं जब किसी दोस्त को बताता कि मैं नागासाकी जाने लगूँ, तो पहला सवाल ये होता कि वो जिधर एटम बम गिरा
0: जी,
1: था
0: पाकिस्तान में ये दो शहर बहुत मशहूर है।
1: हिरोशिमा
0: सही
1: नागासाकी,
0: सही,
1: तो मैं कहता हाँ उधर जाने लगूँ। वो कहते हैं बच के रहना, उधर अभी भी रेज हैं। वो पाकिस्तान में अभी तक है
0: हाँ,
1: ना वो कल।
0: मिसकंसेप्शन है जी,
1: हाँ,
0: बिल्कुल इस वाले से सही।
1: तो जैसे मैं जापान में आया तो नागासाकी में देखा बिल्कुल वो उस तरह से रेज वगैरह का कुछ नहीं है, रेज है ही नहीं,
0: ख़त्म, जी,
1: ख़त्म हो गई है। तो बाकी पानी भी क्लियर है, हर चीज़ क्लियर है, और बोर्ड में बहुत पुरसकून जगह है नागासाकी।
0: तो
1: एज
0: पाकिस्तान में आप कहाँ से हैं?
1: मैं गुजरांवाला से ताल्लुक़ रखता हूँ
0: अच्छा, तो यानी पहलवानों और लजीज खानों के लिए मशहूर है,
1: जी, ऐसे
0: तो कैसा लगा जापान आके? पहलवान तो शायद आपको नजर आएंगे, तो लजीज खानों के बारे में बताइए, क्या फर्क आपने फील किया, इंप्रेशन क्या था आपका?
1: खानों का एक तो हमारा वो थोड़ा डाइटरी रिस्ट्रिक्शन भी है उस लिहाज से, और दूसरा वाकियन अभी तक खानों को मिस ही करते हैं। पाकिस्तान के खाने और तरह से हैं, और जापान के खाने बिल्कुल डिफरेंट किस्म
0: क्या
1: के
0: फर्क
1: हैं।
0: है मसलन?
1: मसलन हम
0: मसाले, मिर्च की कमी?
1: मसाले, मिर्च और हैवी चीज़ें, फुल घी डाल के और तड़का लगा के वो चीज़ें खाना पसंद करते हैं। जापान में हेल्दी तो हैं, लेकिन उस तरह से मसाले मिर्च नहीं है, तो
0: अच्छा,
1: इस वजह से मज़ा नहीं आता।
0: तो जापान का इंतखाब आपने क्यों किया? आप यूरोप जा सकते थे, आप अमेरिका जा सकते थे, आप पाकिस्तान में ही कर सकते थे, एक एग्रीकल्चर कंट्री है, तो आपने PhD के लिए जापान का इंतखाब क्यों किया?
1: मैं फुली फंडेड स्कॉलरशिप देख रहा था, तो एशिया में मैं ज़्यादा देख रहा था, और जापान एक लिहाज से बिल्कुल एशिया का समझ लें ऐसी जगह के सारे यहाँ आना पसंद करते हैं। मैं जब एडमिशन हो भी चुका था, तब भी मैं किसी को बताता कि मैं जापान जाने लगूँ, तो एक अलग तरह से वो मुझे देखते, इज्जत देते कि वो जापान, जापान का एक नाम है सिविलाइजेशन के लिहाज से और तरक्की के लिहाज से। तो इस वजह से मेरा भी ज़्यादा दिल यही था कि मैं जापान जाऊँ।
0: पाकिस्तान में आप तकरीबन 16 साल पढ़ते रहे, फिर
1: जी
0: उसके बाद आप यहाँ पे आए,
1: जी
0: तो क्या फ़र्क आपको महसूस हुआ तालीमी निज़ाम में, जो तालीम का तरीका है? आपके ख्याल में क्या वजह है कि जापान आगे निकल रहा है मुख्तलिफ फील्ड्स में, और एग्रीकल्चर भी इज़ आई थिंक नो एक्सेप्शन?
1: जी, ऐसे ही है। मेन वजह यही है कि हमारा तालीमी निज़ाम जो पाकिस्तान में है, उसमें ज़्यादातर थोरेटिकल चीज़ें हैं, और सिर्फ हम वही पुराने अंदाज में लेके चल रहे हैं, वही नोट्स हैं और पुराने पुराने इंस्ट्रूमेंट हैं, चलते हैं नहीं चलते, मतलब हम बहुत रिसर्च के लिहाज से उस तरह से काम नहीं कर रहे, और उसकी उस तरह पब्लिकेशन भी नहीं होती। और लेकिन जापान उसके लहाज से मतलब बहुत तरक्की याफ्ता है, और ये बहुत ज़्यादा रिसर्च पे फोकस करते हैं, और इनकी रिसर्च दुनिया में मानी जाती है। बहुत स्लो अंदाज़ में, स्लो एंड स्टेडी अंदाज़ में, लेकिन उसको बेहतरीन अंदाज़ में वो रिसर्च आउटकम लेके आते हैं। इस वजह से शायद
0: जल्दी नहीं करते?
1: जल्दी नहीं करते,
0: अच्छा,
1: हम शायद थोड़े से शॉर्टकट भी ले लेते हैं कि जल्दी आउटकम आए और बस पब्लिकेशन ले लें, लेकिन जापान में बहुत स्लो लेके चलते हैं, और उसका एक एक पॉइंट को देखते हैं कि इधर क्या बेहतरी है और इसको किस तरह करें, और फिर जो आउटकम निकलती है, और वो वाकयान जो है वो दुनिया में सभी में मानी जाती है कि ये जापान में काम हुआ है।
0: सही। तो आपका रिसर्च किस हवाले से था?
1: मेरी रिसर्च इन्वायरमेंटल साइंस में जो है वो सॉइल में जो हैवी मेटल कंटेमिनेशन हो जाती है, ये रिसेंटली जो इंडस्ट्रीज़ हैं इनकी वजह से, दूसरे जो वेस्ट वगैरह है उसकी वजह से मिट्टी में और पानी में
0: आलूदगी होती है?
1: आलूदगी होती जा रही है,
0: अच्छा,
1: तो उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं? अगर आलूदगी वाली ज़मीन पे अगर हम पैदावार कर लें, वो अब कंटेमिनेशन उस फूड में आ सकती है,
0: सही
1: अगर वो हम खाएंगे तो हमारे जिस्म तक आ जाएगी और उसकी बहुत कार्सिनोजेनिक मतलब बहुत सीवियर डिजीजेज है। तो उसको किस तरह हम ओवरकम कर सकते हैं, इसके हवाले से मेरी रिसर्च थी PhD में।
0: अच्छा, गुजरांवाला मेरे ख्याल में इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा है और ये मसला वहाँ पे भी होगा। क्या समझते हैं आपके इस जो इस रिसर्च है, इससे उसमें कोई फ़ायदा होगा, आप उसको यूटिलाइज करेंगे एक्चुअल ग्राउंड पे?
1: गुजरांवाला, फैसलाबाद, ये बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरिया है और जैसे जापान में एक तरह से आलूदगी जो इंडस्ट्री से निकलती है उसको कंट्रोल किया जाता है, पाकिस्तान में थोड़ा सा उस तरह से मैनेज नहीं किया जाता, इस वजह से पानी बहुत ज़्यादा आलूदगी हो रही है। अभी आर्सेनिक का बहुत ज़्यादा मसला है उधर पानी का, और फिर वो पानी जो मिट्टी में जाता है वो मिट्टी भी आलूदगी हो जाती है। ये रिसर्च तो बहुत ज़रूरी है, इंशाल्लाह अगर मुझे मौका मिला अगर उधर काम करने का तो इसको जो मैंने यहाँ रिसर्च की है पढ़े उसको उधर करेंगे,
0: इस्तेमाल में लाएंगे और
1: इस्तेमाल में
0: लोगों को
1: लाएंगे।
0: इससे फ़ायदा होगा
1: जी
0: डेफिनेटली। अच्छा, तो अब अगर आप वापस जाते हैं, लेट सपोज़ आप इसी काम के लिए जाते हैं जापान से, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप किस चीज़ को मिस करेंगे जापान का, या कौन सी चीज़ें हैं जो आपको याद आएंगी वहाँ पे?
1: सफाई के लिहाज से मतलब जापान काफ़ी ज़्यादा साफ़ है, रोड हर जगह मतलब टॉयलेट, इवन टॉयलेट भी बहुत साफ़ है। और दूसरा डिसिप्लिन लाइफ है बहुत ज़्यादा, हम उधर थोड़ी सी सुस्ती कर जाते हैं काफ़ी चीज़ों में, सच्चाई ईमानदारी ये वैसे जापान मशहूर है, तो ये भी चीज़ें काफ़ी मतलब के मिस करूँगा क्योंकि उधर थोड़ा सा हमारा रहना सहना बिल्कुल एक डिफरेंट तरह से होता है। इधर बहुत डिसिप्लिन लाइफ है, हर चीज़ हर काम एक वक्त पे हो रहा
0: शुरू में कोई मुश्किलात आपको पेश आई है, जैसे कि हर चीज़ वक्त पे? मुझे तो काफ़ी फील हुआ था, और
1: है।
0: डिसिप्लिन भी थोड़ा सा भारी गुजरता है बंदा, एक साल तो लेता है।
1: यस,
0: तो आपको कोई ऐसी मुश्किलात पेश आई थी?
1: मैं जिस टाइम आया था 2021 में, तो उस टाइम ये कोरोना का अभी एंड ही हो रहा था, मेरी शायद फर्स्ट फ्लाइट थी जो इधर लैंड हुई थी, उसके बाद दोबारा वैसे बैन लग गया
0: सही सही,
1: था।
0: ओमिक्रॉन आ गया था मेरे ख्याल में,
1: हाँ
0: शायद उन दिनों की बात।
1: हाँ हाँ वही, मतलब एक ही फ्लाइट आई थी और उसमें मैं आ गया। मुझे प्रोफेसर भी कहते तुम बड़े लकी हो,
0: सही,
1: उससे पहले भी बंद थी और उसके बाद भी 1-2 महीने बंद हो गई थी। तो बहरहाल मैं आया और पहले तो 14 दिन का इधर क्वारंटाइन था, वो तो मैं चलो अकेला रह लिया। फिर जब नागासाकी गया और मतलब कि बिल्कुल अकेला, उधर पाकिस्तानी भी नहीं था यूनिवर्सिटी में मेरे, ना पहले पहले बहुत मुश्किल हुआ, मतलब एक तनहा ज़िंदगी, और पाकिस्तान थोड़ी सी सोशल लाइफ है, यहाँ
0: हर
1: तो
0: बंदा अपने काम में मगन।
1: मगन है और बहुत प्राइवेट लाइफ, मतलब कोई उस टाइम तो एक फासला बना लेते, चलते भी
0: हाँ हाँ वाकई
1: फासला
0: वो
1: बना
0: भी
1: लेते
0: ज़्यादा
1: थे
0: हो
1: कि
0: गया था।
1: हाँ
0: सही,
1: वो वक्त तो ऐसे मुझे लगा मैं किधर आ गया हूँ। तो काफ़ी शुरू में डिप्रेशन भी होने लगा, मतलब 1-2 माह मैं बिल्कुल परेशान था कि मैं किधर आ गया हूँ, कोई खास कम्युनिकेशन नहीं है, एक तो लैंग्वेज बहुत
0: तो लैंग्वेज
1: बड़ा
0: सीख पाए या नहीं इसके बारे में बताइए, जापानी जबान?
1: मैंने कोशिश तो बहुत की, यूनिवर्सिटी में भी क्लासें कुछ लीं, एक N5 लेवल मैं कह सकता हूँ कि मुझे आ गया, मतलब कि बेसिक बहुत बेसिक जो है वो मैं समझ सकता हूँ।
0: तो अभी बहुत सारे जो हमारे लिसनर्स हैं पाकिस्तान में, खासकर स्टूडेंट जो जापान आना चाहते हैं, खास तौर पे जो आपका जो स्कॉलरशिप है मिक्स्ड
1: जी
0: का स्कॉलरशिप,
1: जी जी
0: इसके थ्रू आना चाहते हैं, जो ताकि वो चाहते हैं कि फ्री में उनको एजुकेशन भी मिल जाए, एक्सपोजर भी हो जाए, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे?
1: मैक्स स्कॉलरशिप जो है वो उसके दो वेज हैं, एक एम्बेसी ट्रैक है एक यूनिवर्सिटी ट्रैक। एम्बेसी ट्रैक जो है ये यही अप्रैल मई में अभी जापान एम्बेसी जो पाकिस्तान में है उनकी वेबसाइट पे वो अनाउंस कर देते हैं, अभी ओपन हो गए। तो सबसे पहले तो उसमें 80% मार्क्स आपके होने चाहिए बैचलर में या मास्टर्स में,
0: सही,
1: अगर मास्टर के लिए आ रहे हैं बैचलर में, और अगर PhD के लिए आ रहे हैं तो मास्टर्स में आपके 80+ मार्क्स होने चाहिए, और अगर आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं देन तो जापान आपको पक्का ले लेगा,
0: सही,
1: मतलब अच्छी प्रोफाइल को पक्का ले लेता है। तो उसमें वो कुछ डॉक्यूमेंट हैं वो उसी वेबसाइट पे होंगे, उनको फिल आउट करके आपने इस्लामाबाद भेज रहे होते हैं एम्बेसी को, फिर उसमें वो रिक्रूट करते हैं और कुछ कुछ शॉर्टलिस्ट करते हैं और फिर कुछ का इंटरव्यू या टेस्ट लेते हैं और उसके बाद वो सिलेक्ट हो जाता है और फिर आप यूनिवर्सिटी आ जाते हैं। ये है एम्बेसी ट्रैक जो है स्कॉलरशिप मैक्स्ड, और दूसरा
0: ये एक तरीका है।
1: ये एक
0: अच्छा, अब
1: तरीका
0: एक
1: है,
0: दूसरा तरीका आप बता
1: अब
0: रहे
1: दूसरा तरीका है
0: जी।
1: वो भी मैक्स्ड ही है लेकिन वो यूनिवर्सिटी ट्रैक है,
0: अच्छा
1: उसमें आप अपने रिलेटेड जो यूनिवर्सिटी हैं उनको ओपन करते हैं और उनकी फैकल्टी में जाके उनकी फैकल्टी में अपने रिलेटेड जो रिसर्च प्रोफेसर हैं उनको कॉन्टेक्ट करते हैं, اور ان سے کہتے ہیں کہ میں اس طرح سے اپنی پروفائل انہیں شو کرواتے ہیں، اپنی سی وی انہیں بھیجتے ہیں کہ میں آپ کی لیب میں کام کرنا چاہتا ہوں. اگر وہ اوکے کر دیتے ہیں پھر وہ یونیورسٹی جو ہے آپ سے کانٹیکٹ کرتی ہے اور ڈاکومنٹیشن لیتی ہے، اور پھر آپ کا ایک انٹرویو بھی ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ سلیکٹ ہو جاتے ہیں.
0: صحیح. اچھا، تو اب یہاں این ایچ کے میں آپ ٹرانسلیٹر ہیں، تو اس سے پہلے بھی ظاہر ہے آپ خبریں تو پڑھتے ہوں گے، تو یہاں بھی خبروں کا آپ کا ترجمہ کی آپ کی ذمہ داری ہے.
1: جی جی.
0: کیا فرق آپ کو محسوس ہوا جو دیگر میڈیا ہیں اور پاکستانی اور یہ جو این ایچ کے ہمارا ہے، اس کی خبروں میں کیا فرق آپ کو محسوس ہوا؟
1: پاکستانی میڈیا میں تھوڑا جذباتی نیوز زیادہ دیتے ہیں، مطلب ہیڈ لائنس پہ زیادہ وہ ہوتا ہے ان کا فل زور کہ یہ کسی طرح لوگوں کی اٹریکشن لیں. لیکن این ایچ کے میں یہ زیادہ نیوز پہ اور اس کا کنٹینٹ پورا دیتے ہیں کہ یہ واقعہ کب اور کہاں کیسے ہوا، اس کا نیچے فل ڈیٹیل بھی ہوتی ہے تاکہ ہمیں دوبارہ ریمائنڈ نہ کرنا پڑے. تو وہ ایک ہی نیوز میں آپ ایزیلی سمجھ سکتے ہیں کہ اس نیوز کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، پس منظر کیا ہے اور یہ ابھی نیوز کیوں آ رہی ہے.
0: اچھا، بہت بہت شکریہ شبر صاحب دیوان خانہ کو ٹائم دینے کے لیے. ہمارے نئے خواہشات آپ کے ساتھ ہیں. تھینک یو سو مچ.
1: بہت شکریہ آپ کا.
2: جی سامعین، سید شبر حسین شاہ صاحب کی باتیں ہم نے سنی. آج گلوکار گن ہوشینو کا گیت سوزو ان کے نام کریں گے. اور آپ کو اس گانے کی تفصیل بتاتے چلیں کہ یہ گانا نینٹینڈو گیم سے منسوب ہے جو سپر ماریو برادرز کی 35ویں سالگرہ کے موقع پر گایا گیا.
3: گین ہوشینو 1981 میں پیدا ہوئے سیتاما پریفیکچر سے تعلق رکھنے والے گین ہوشینو اداکار، موسیقار اور مصنف کے طور پر سرگرم ہیں.
2: انہوں نے این ایچ کے کی مارننگ ڈرامہ سیریز ہم بن آوی کے لیے تھیم سانگ بھی کمپوز کیا.
0: ہمارے جاپانی عملے کی رکن محترمہ اوراتا نے یہ گانا کیوں منتخب کیا؟ اس کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ لفظ سوزو کا مطلب ہے تخلیق. وہ کہتی ہیں کہ میں نے یہ گانا اس لیے منتخب کیا کیونکہ مجھے یقین ہے کہ نئے ٹرانسلیٹر سید شبر حسین شاہ مستقبل میں شاندار صلاحیتوں کا مظاہرہ کریں گے.
3: اس دلچسپ اور منفرد جاپانی گیت کے ذریعے وہ نئے مترجم کو گرم جوشی سے خوش آمدید جاپان کا پیغام دینا چاہتی ہیں. گیت کے بولوں میں ہیں، آئیے کچھ تخلیق کریں، آئیے کچھ منفرد تخلیق کریں.
2: تو چلیے آئیے سنتے ہیں.

0: ये NHK World जापान की उर्दू सर्विस है। हमारी ये नशरियात पाकिस्तान में रात 9 बजे और भारत में रात 9:30 पर शॉर्ट वेव्स 9440 किलोहर्ट्ज पर सुनी जा सकती हैं।
1: जी सामिन, और अब जापानी बोलचाल के प्रोग्राम के हवाले से एक बहुत ही खुसूसी ऐलान।
0: जी दोस्तों, हम आइए जापानी बोलें का क्विज सिलसिला आज से शुरू कर रहे हैं, जापानी जबानदानी, जिसमें जापानी जबान का एक नामुकम्मल जुमला पेश किया जाएगा।
2: इस नामुकम्मल जुमले में खाली छोड़ी गई जगह को आपने पुर करना है और मजकूरा मिसिंग लफ्ज लिखकर हमें रवाना करना है।
1: नामुकम्मल जुमले की तस्वीर हमारे होम पेज पर दीवान खाना के पेज पर मेजबानों की तस्वीर वाले हिस्से में पोस्ट की जाएगी।
2: दीवान खाना के पेज तक रसाई का तरीका बताते चलें कि आपने खोलना है हमारा पेज nhk.jp/urdu, फिर शोज ऑन डिमांड के उन्वान पर जाके दीवान खाना के सफे तक पहुंचकर 24 मई के प्रोग्राम की वेबसाइट खोलिए।
0: इस पेज पर क्विज के जुमले वाली तस्वीर नजर आएगी, इसको देखकर अपना जवाब सोचना है और हमें रवाना कर देना है, और दुरुस्त जवाब वाले सामीन यानी क्विज में शरीक होने वाले सामे का नाम हम दीवान खाना में नश्र करेंगे।
1: तो 24 मई के शो के सफ़े पर 10 सवाल हैं। हारूसा हाउसु वा डैश डैश डैश।
0: इस इबारत में मौजूद खाली जगह पुर करनी है, क्योंकि नामुकम्मल इबारत यानी के सवाल में सिर्फ हारूसान हाउसु वा डैश डैश डैश मौजूद है, लिहाजा बाकी अल्फाज आपने अपने जवाब के तौर पर लिखने हैं।
2: इसके लिए हम आपको इशारा देंगे कि यह हमारे इबारत हमारे होम पेज पर जापानी बोलचाल के प्रोग्राम के कौन से सबक नंबर में है, ताकि आप वहां जाएं, दुरुस्त जवाब तलाश करें। और अभी हमने जो जुमला बताया हारूसा हाउस वा देश देश देश देश, इसका जवाब हमारे होम पेज nhk.jp/urdu पर जापानी बोलचाल के सबक नंबर 1 में मौजूद है।
1: आइए जापानी बोलें के असबाक के मुतल्लिक का सफे तक रसाई हासिल करके इस सबक में जवाब तलाश करें।
2: जी सामिन, आप अपना जवाब जापानी या उर्दू रस्म الخط में या फिर रोमन हरूफ में लिखकर भेज सकते हैं। सही जवाबात हमारे प्रोग्राम दीवान खाना में पेश किए जाएंगे और क्विज में शरीक होने वाले हर सामे का नाम हम दीवान खाना में शरीक करेंगे, दुरुस्त जवाब वाले सामे का नाम शामिल करेंगे। और अब अपने मेज़बानों को इजाज़त दीजिए।

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

0: यह है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। स्वागत है सभी श्रोताओं का आपके मनपसंद कार्यक्रम चेरी के देश से में। उगते सूर्य के देश से सबसे पहले स्वीकार करें अपनी सखी शांग्रीला जैन का कोनिचिवा, नमस्कार और आदाब।
1: सभी दोस्तों को वायला खवानों का भी कोनिचिवा, नमस्कार। फिर आया एक नया रविवार और साथ ही लेकर आ गए हम आपके पत्रों के जवाब और जापान के बारे में कई जानी अनजानी रोचक बातें।
0: और बताएं वैला जी, इस गर्मी में क्या हाल है?
1: शंग्रीला जी, हाल तो एकदम बढ़िया है। देखिए, कभी मौसम का मिजाज ऊपर नीचे हो जाता है, तो कभी तेज गर्मी हो जाती है, तो कभी पारा लुढ़क जाता है, तो मौसम कभी कभी सुहावना भी हो जाता है।
0: सही कहा आपने, बीते सप्ताह तो तापमान ऐसा चढ़ा कि लगा गर्मियां आ गई।
1: हाँ,
0: फिर बारिश की बौछार ने कुछ राहत दी और साथ ही इन दिनों देखिए जगह जगह खिल रहे गुलाब के फूल भी खूब खुशियां बिखेर रहे हैं।
1: हाँ, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। देखिए, साकुरा की बहार के बाद तो जैसे प्रकृति चहुं ओर खिल जाती है। एक के बाद एक अलग अलग तरह तरह के फूल लोगों को खूब आकर्षित करते हैं ना?
0: जी हाँ। देखिए, अभी हाल ही में मुझे एक जापानी दंपति के घर जाने का मौका मिला।
1: अच्छा,
0: उनका घर तो जैसे किसी परियों का घर लग रहा था।
1: अरे वाह, अच्छा ऐसा था, मतलब क्या था उस
0: परियों की कहानी लग रही थी, मतलब उसका बाहर से बहुत ही सुंदर था।
1: अच्छा,
0: उनके देखिए घर की बाहरी दीवारों पर चारों ओर गुलाब की बेले लिपटी हुई थी। मतलब दो मंजिला मकान था तो बेले ऊपर दो मंजिला तक चढ़ी हुई थी। इतने तरह तरह की किस्में और इतने रंग बिरंगे गुलाब की आप कल्पना भी नहीं कर सकती। कुछ बेल की आयु तो 50 साल से अधिक थी।
1: अच्छा,
0: और वो प्यार से बता रहे थे कि ये बेल उन्होंने इस साल लगाई, ये उन्होंने इस साल लगाई। और एक ही घर में सैकड़ों की संख्या में गुलाब थे।
1: वाह, इतने फूल और इतने पेड़। लेकिन देखिए, देखरेख में भी खासी मेहनत लगती होगी उनको।
0: जी जी बिल्कुल लगती है। और देखिए ना, साल भर इन पेड़ों की फूलों की इतनी
1: सेवा करनी पड़ती
0: है। जी जी, सेवा करनी पड़ती है। और कुछ ही दिनों की फिर ये छटा बिखेर कर चले जाते हैं, ढेर सारी यादें और मन में ढेर सारी खूबसूरती देकर।
1: जी जी,
0: उनके घर के सामने से जो भी निकलता था वो पल भर के लिए तो ठिठक ही जाता था गुलाबों को निहारने के लिए।
1: हाँ, देखिए बीते कुछ दिनों हमने भी तो स्टूडियो में गुलाबों का आनंद लिया था ना।
0: जी और, हाँ,
1: हमारे श्रोता मित्रों ने हमारी साप्ताहिक रील में देखा ही होगा। लेकिन शांग्रीला जी, देखिए अब गुलाबों से रुख करते हैं पत्रों की ओर, क्योंकि श्रोता मित्रों के साथ ही मुझे भी इंतजार है उनकी राय जानने का।
0: तो चलिए शुरू करते हैं सिलसिला। पहला पत्र है ओडिशा के सिंगा से। जगह का नाम सुनकर तो आप पहचान ही गई होंगी कि किसका पत्र है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, हमारे बहुत ही नियमित श्रोता मित्र सुरेश अग्रवाल जी का खत है आपके हाथ में। और देखिए, हर कार्यक्रम पर इतनी गहरी टिप्पणी दिया करते हैं, तो इस बार क्या लिखा है सुरेश जी ने?
0: लिखा है, सबसे पहले तो आदरणीय वायला जी एवं रोहिणी जी सस्ने नमस्कार।
1: सुरेश जी, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार।
0: आगे लिखा है, 17 मई को प्रसारित चेरी के देश से कार्यक्रम में श्रोता मित्रों के पत्रों एवं प्रतिक्रियाओं के उपरांत जापान की दैनिक जीवन शैली में साइकिल की महत्वपूर्ण भूमिका तथा साइकिल चलाते समय नियमों की अनदेखी करने पर लगाए जाने वाले ब्लू टिकट चालान संबंधी अत्यंत उपयोगी जानकारी सुनने को मिली।
1: अच्छा,
0: निसंदेह जापान में साइकिल की लगातार बनी लोकप्रियता वहां के लोगों की स्वास्थ्य जागरूकता और अनुशासित जीवन शैली का सशक्त उदाहरण प्रस्तुत करती है। इसी क्रम में विशाखापट्टनम के श्रोता भाई R.S. विजय कुमार द्वारा साहित्य सरिता के पुराने अंकों के बार बार पुनर्प्रसारण को लेकर व्यक्त की गई शिकायत भी पूरी तरह उचित प्रतीत हुई। इसे सुनकर ऐसा महसूस हुआ कि मानो NHK वर्ल्ड के कार्यक्रम निर्माण में कहीं न कहीं ठहराव आ गया है और नवीनता पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आशा है आप इस विषय पर गंभीरता पूर्वक विचार कर कार्यक्रमों में नई सामग्री एवं ताजगी बनाए रखने की दिशा में आवश्यक कदम उठाएंगे।
1: सुरेश जी, साइकिल के नए नियमों पर हमारी रिपोर्ट आपको पसंद आई, आभार। वैसे तो आमतौर पर जापान में लोग नियमों का बखूबी पालन करते हैं, लेकिन साइकिल सवारी के दौरान मोबाइल जैसे आधुनिक जमाने के साधनों के उपयोग से दुर्घटनाएं बढ़ रही थी। कारण तो और भी थे, इसलिए सख्ती करनी ही पड़ी। तो शंग्रीला जी, आपकी क्या राय है, क्या अभी तक आप ब्लू टिकट से बची हुई हैं कि नहीं, ये बताइए।
0: अरे भाई श्वायला जी, मैं तो बहुत ही ध्यान से साइकिल चलाती हूँ।
1: अच्छा।
0: इसलिए अभी तक तो कोई चालान नहीं कटा, लेकिन नियमों में इतने सारे बिंदु हैं कि थोड़ा असमंजस भी हो रहा है कि कब कोई कहाँ गलती हो जाए, इसलिए साइकिल सवारी के दौरान थोड़ा और ज्यादा ध्यान देने लगी हूँ।
1: अरे मैं आपको एक बड़ा मजेदार किस्सा बताती
0: हूँ। अच्छा,
1: हाँ, कि लोग इन ब्लू टिकट से डरावने उनको सपने आने लग गए हैं।
0: अच्छा।
1: हाँ ऐसा भी है। तो देखिए, जिस दिन से ये नियम लागू होने वाले थे, तो उससे एक दिन पहले रात को मेरे बेटे को सपना आया कि जैसे ही वो घर से भाग निकला, पुलिस ने उसे पकड़ लिया। इतनी दहशत में था कि मैं सही से तो आज साइकिल चला पाऊंगा कि नहीं, तो उससे उसको सपने आने लगे।
0: जी, लोगों की नींदें उड़ी हुई है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो आप भी ध्यान रखिए, मैं भी रखूंगी। और सुरेश जी, जहां तक बात साहित्य सरिता के पुनर्प्रसारण की है, तो साहित्य प्रेमी श्रोता की शिकायत तो जायज है, लेकिन कार्यक्रमों में ठहराव की बात से मैं सहमत नहीं हूँ। क्योंकि देखिये, आप हमारी वेबसाइट पर शो के अगर पेज पर जाए तो आपको अलग अलग विषय वस्तु पर कई नई वीडियोस मिलेंगी। और जैसे बीते दिनों हमने कल्चर क्रॉसरोड यानी संस्कृति मेल कैटेगरी में अविस्मरणीय स्वाद पर एक वीडियो साझा की थी।
0: और जब इस वीडियो की लिंक फेसबुक पर साझा की गई, तो आप जानेंगे 16,000 लोगों ने इसे लाइक किया है।
1: अच्छा।
0: और साथ ही कई लोगों ने कमेंट करके अपने अपने पसंदीदा व्यंजनों की यादें सबके साथ बांटी। ज्यादातर लोगों के कमेंट में माँ के हाथ का स्वाद सबसे प्रिय है।
1: अच्छा।
0: कुछ अनोखे व्यंजनों के नाम भी पता चले। वायला जी, आपकी कोई ऐसी याद है जो किसी खास व्यंजन से जुड़ी है?
1: देखिए श्रृंगलीला जी, मुझे याद है कि मेरी माँ शक्करकंद के गुलाब जामुन बनाया करती थी।
0: अरे वाह, शक्करकंद के गुलाब जामुन, पहली बार सुन रही हूँ ये नाम।
1: ये इतने मुलायम होते हैं कि क्या कहूँ। अगर कभी आपको इसकी रेसिपी मिले तो आप भी जरूर बनाकर देखें। और अगर मैं जापान की बात

0: तो जब मैं पहली बार जापान आई थी तो डिज्नीलैंड गई थी.
1: अच्छा.
0: और वहां मैंने पहली बार जापानी शैली की करी खाई थी. तो उसके बाद तो मैं जापानी करी की दीवानी हो गई थी.
1: वो डिज्नीलैंड की वजह से थी कि जापानी करी के स्वाद की वजह से?
0: पता नहीं उस दिन क्या था, लेकिन मैं बहुत बड़ी फैन हो गई जापानी करी की. और आप भी बताएं ना, आपको क्या पसंद है?
1: देखिए, एक खास याद तो मेरे कॉलेज के जमाने की है, जब मैं छात्र आदान प्रदान के दौरान राजस्थान से उड़ीसा में भुवनेश्वर. अच्छा. के पास जानला गांव में रुकी थी. उस समय जिनके यहाँ ठहरे थे वे कच्चे नारियल के स्टफ्ड पराठे बनाती थी.
0: अच्छा.
1: वैसे पराठे मैंने आज तक दोबारा नहीं खाए. उसके अलावा जब भी मैं अपने ननिहाल जाती हूँ तो मेरे लिए पूरण पोली हमेशा ही बनती है. वो स्वाद मेरे लिए बहुत ही खास है.
0: अच्छा. तो मित्रों, आप भी अपने किसी पसंदीदा व्यंजन की यादें हमसे जरूर साझा करें,
1: और हो सके तो उसकी तस्वीर भी भेजें. और हाँ, कल्चर क्रॉस रोड यानी संस्कृति मेल में अविस्मरणीय स्वाद की वीडियो भी जरूर देखें और बताएं कि आपको कैसी लगी.
0: जी, अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और लेते हैं पश्चिम बंगाल पूर्वी बर्धमान से प्रदीप बसाक जी का ये लंबा सा पत्र. वाह वाह, आपने भी भोजन का ही जिक्र किया है.
1: अरे वाह, किस बारे में है?
0: देखिए, लिखते हैं, मैंने 12 मई को बिरयानी पर एक फेसबुक पोस्ट देखी थी. बिरयानी का नाम सुनते ही मन जैसे खुश हो उठता है. खुशबूदार चावल, नरम मांस, मसालों का अद्भुत मेल और गर्मा गर्म परोसने का अंदाज, सब मिलाकर बिरयानी केवल एक भोजन नहीं बल्कि एक भावना, एक याद और लोगों को जोड़ने वाला खास एहसास है. हमारे यहाँ भी बिरयानी की लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है. प्रियजनों के साथ एक प्लेट बिरयानी बांटकर खाने की खुशी सचमुच अलग ही आनंद देती है. आज के समय में बिरयानी केवल खाने की सूची तक सीमित नहीं है बल्कि ये बहुत से लोगों की रोजी रोटी और सपनों से भी जुड़ी हुई है.
1: अरे वाह.
0: विशेष रूप से भारतीय और नेपाली रसोइयों के हाथों से बनी बिरयानी जापान सहित दुनिया के कई देशों में बेहद लोकप्रिय हो चुकी है. विदेश की धरती पर अपनी संस्कृति और स्वाद की पहचान बनाए रखना वास्तव में गर्व की बात है.
1: जी बिल्कुल.
0: लेकिन देखिए, दुख की बात यह है कि जापान में नए वीजा संबंधी कुछ नियम विदेशी रसोइयों और रेस्तरां व्यवसायियों के लिए बड़ी चिंता का कारण बन गए हैं. जिन्होंने वर्षों की मेहनत से अपनी पहचान बनाई, आज वे अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं. काम खोने का डर और देश छोड़ने की आशंका उनके सपनों को धीरे धीरे धुंधला कर रही है. एक रसोइया केवल खाना नहीं बनाता बल्कि वो अपने अनुभव, संस्कृति और प्रेम को भी लोगों तक पहुंचाता है.
1: सही कहा.
0: इसलिए ऐसे कुशल लोगों को खो देना केवल व्यापार की हानि नहीं बल्कि सांस्कृतिक विविधता की भी क्षति है. उम्मीद है कि भविष्य में ऐसे निर्णय लिए जाएंगे जिनसे विदेशी रसोइये और रेस्तरां व्यवसायी सुरक्षित रूप से काम कर सकें और दुनिया भर में बिरयानी की ये स्वादिष्ट परंपरा और भी अधिक फैल सके.
1: प्रदीप जी, इतने विस्तार से अपनी राय साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार. आशा करते हैं कि सभी का मंगल हो और किसी की भी रोजी रोटी का नुकसान ना हो और बिरयानी का ये स्वाद हमेशा लोगों की जुबान पर बना रहे. और देखिए, अब समय हो चला है श्रोताओं को फ्रीक्वेंसी बताने का, तो मित्रों फटाफट नोट करें हमारी फ्रीक्वेंसी.
2: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा. भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्ट वेव 11655 किलोहर्ट्ज पर. हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है. सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान.
0: दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से चेरी के देश से कार्यक्रम में. अब देखिए, टोक्यो से रुमा गुप्ता ने पंकज त्रिपाठी के साथ हुई भेंटवार्ता की सराहना की है. लिखती हैं, पंकज त्रिपाठी के साथ हुई भेंटवार्ता ने मंत्रमुग्ध कर दिया. इसे सुनाने के लिए धन्यवाद. भविष्य में भी ऐसी वार्ताएं सुनाएं.
1: रुमा जी, NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा परिवार में आपका स्वागत है और कार्यक्रम पसंद करने के लिए शुक्रिया.
0: जी,
1: वादा रहा आगे भी ऐसी रोचक वार्ताएं जरूर सुनाएंगे. और आप भी हमसे वादा करें कि आप पत्रों का ये सिलसिला जारी रखेंगे. और ये अगला पत्र है झारखंड जमशेदपुर से SB शर्मा जी का. अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप की हालिया चीन यात्रा पर उन्होंने अपनी राय दी है.
0: अच्छा.
1: और साथ ही लिखा है,

0: देश दुनिया के समाचार सुनाने के लिए एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा को धन्यवाद।
1: शर्मा जी, पत्र के लिए धन्यवाद। आगे भी कार्यक्रम सुने और अपनी राय से अवगत कराएं। अब देखिए, जयपुर से पथिक जैन जी ने लिखा है कि चेरी के देश से कार्यक्रम की टीम को मेरा नमस्कार। मैं आपका कार्यक्रम समय समय पर अवसर मिलने पर सुनता हूँ। मुझे लगता है कि आप नियमित लिखने वालों के ही पत्र शामिल करते हैं। शंगरीला जी, देखिए थोड़ी सी शिकायत है इनकी।
0: ऐसी बात बिल्कुल नहीं है पथिक जी।
1: देखिए आगे कह रहे हैं कि मैंने अनेक बार पत्र लिखे परंतु मेरे पत्र को शामिल नहीं किया गया। मैंने सुझाव भी दिया था कि जो श्रोता ऑनलाइन उपलब्ध कार्यक्रम को उस समय में डाउनलोड कर सके और सुविधानुसार सुन सके। अभिनेता पंकज त्रिपाठी जी से साक्षात्कार के तीनों भाग सुने। पंकज त्रिपाठी जी जमीन से जुड़े अद्भुत प्रतिभा के धनी व्यक्ति हैं। उनकी बातों से ऐसा लगा कि ये हमारे बीच के ही हैं।
0: वह पंकज जी को लोग आज भी याद कर रहे हैं
1: जी।
0: और पथिक जी, कार्यक्रम पसंद आया ये जानकर बहुत अच्छा लगा हमारे लिए। देखिए, सभी श्रोता बहुत प्रिय हैं, सभी बराबर हैं। जब भी हमें आप लोगों के पत्र मिलते हैं, हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करते हैं। हाँ, शायद कभी थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन कोताही तो कतई नहीं। लेकिन शिकायत तो हमारी ओर से भी है कि आप बड़े दिनों बाद हमें याद कर रहे हैं।
1: हाँ, पहले तो काफी जल्दी जल्दी पत्र इनके मिला करते थे
0: जी,
1: लेकिन अब पता नहीं कहाँ व्यस्त हो गए हैं। वैसे हम आपको बता दें कि प्रसारित होने वाले हमारे अधिकांश कार्यक्रमों का आनंद एक सप्ताह तक तो आप ले ही सकते हैं
0: जी। और वहीं देखिए, कुछ कार्यक्रमों की वीडियो तो साल भर उपलब्ध रहती हैं
1: जी।
0: जापान की रेलगाड़ियों, प्राकृतिक नजारों आदि पर कई वीडियो हैं हमारी वेबसाइट पर। बीते सप्ताह टोक्यो का जौहरी बाजार कहे जाने वाले ओकाची माची इलाके पर भी एक वीडियो प्रेषित की गई है।
1: ओकाची माची तो देखिए, यहाँ कई भारतीय जौहरियों के भी कार्यालय और दुकानें हैं और काफी रोचक जगह है
0: जी। हाँ, वहाँ जाएंगे तो आपको अक्सर भारतीय लोगों की लोग घूमते हुए दिख जाएंगे।
1: अच्छा।
0: खूब रौनक भी रहती है।
1: अच्छा।
0: और आजकल विदेशी ग्राहकों की वहाँ संख्या भी बढ़ रही है। और इस कार्यक्रम की लिंक फेसबुक पर साझा की गई, जिस पर ऋषि सिंघवी ने ढेर सारे इमोजी के जरिए भारत और जापान के बीच संबंधों को बड़े मजेदार तरीके से दिखाया है। भारत को दर्शाते हॉकी, क्रिकेट और तिरंगा के इमोजी हैं, तो जापान का प्रसिद्ध तोरी गेट, हीना मात्सुरी की गुड़िया और राइजिंग सन है।
1: अच्छा, और देखिए ऋषि जी का एक कमेंट और भी है, उसमें इन्होंने लिखा है कि जापान और भारत के बीच खूबसूरत संबंध है। भारत जहाँ मैं पैदा हुआ और जापान जहाँ मैं काम करता हूँ। हम ओकाची माची और यहाँ बसे भारतीय समुदाय पर और कार्यक्रम देखना चाहेंगे।
0: अच्छा ऋषि जी, यकीनन कोशिश करेंगे
1: जी जी।
0: और वायला जी, जैसे भारत में जापानी एनिमे बहुत लोकप्रिय है, वैसे अब जापानी संगीत भी लोकप्रिय होने लगा है।
1: अरे वाह, ये तो आपने अच्छी खबर दी
0: जी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रख्यात जापानी गायक फूजी खाजे ने भारत में कॉन्सर्ट किया जो बिल्कुल हाउसफुल गया।
1: अच्छा, ऐसी बात है क्या? तो मुझे लगता है शायद भारत में कॉन्सर्ट करने वाले वे पहले जापानी कलाकार हैं, उन्हें भारत से खास लगाव भी है।
0: जी हाँ, उनका परिवार भारत के अध्यात्म से काफी प्रभावित है। उन्होंने एनएचके के टाइनी डेस्क कॉन्सर्ट्स जापान कार्यक्रम में शिरकत की थी और अपने गीतों की लड़ियों से दर्शकों को आनंद विभोर कर दिया। इस कार्यक्रम की वीडियो भी वेबसाइट पर शो कैटेगरी में उपलब्ध है। गानों के सबटाइटल अंग्रेजी में हैं, तो बोल समझना आसान है।
1: तो शांग्रीला जी, क्यों ना आज कार्यक्रम में श्रोताओं को फूजी खाजे का ही एक गीत सुनाया जाए। तो ये गीत है ग्रेस, और आपको बता दें कि इस गीत को भारत के कई शहरों में शूट किया गया है, जिसमें हरिद्वार भी है और इसमें स्थानीय लोगों को भी देखा जा सकता है।

0: दोस्तों आशा है आपको भारत ने फिल्माया ये गीत पसंद आया होगा और अब जाने की अनुमति दीजिए अपनी सखी शांग्रीला जैन को
1: और वायला खमानो को।
0: सायोनारा, नमस्कार।

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

0: यह है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। स्वागत है सभी श्रोताओं का आपके मनपसंद कार्यक्रम चेरी के देश से में। उगते सूर्य के देश से सबसे पहले स्वीकार करें अपनी सखी शांग्रीला जैन का कोनिचिवा, नमस्कार और आदाब।
1: सभी दोस्तों को वायला खवानों का भी कोनिचिवा, नमस्कार। फिर आया एक नया रविवार और साथ ही लेकर आ गए हम आपके पत्रों के जवाब और जापान के बारे में कई जानी अनजानी रोचक बातें।
0: और बताएं वैला जी, इस गर्मी में क्या हाल है?
1: शंग्रीला जी, हाल तो एकदम बढ़िया है। देखिए, कभी मौसम का मिजाज ऊपर नीचे हो जाता है, तो कभी तेज गर्मी हो जाती है, तो कभी पारा लुढ़क जाता है, तो मौसम कभी कभी सुहावना भी हो जाता है।
0: सही कहा आपने, बीते सप्ताह तो तापमान ऐसा चढ़ा कि लगा गर्मी आ गई।
1: हाँ,
0: फिर बारिश की बौछार ने कुछ राहत दी और साथ ही इन दिनों देखिए जगह जगह खिल रहे गुलाब के फूल भी खूब खुशियां बिखेर रहे हैं।
1: हाँ, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। देखिए, साकुरा की बहार के बाद तो जैसे प्रकृति चहुं ओर खिल जाती है। एक के बाद एक अलग अलग तरह तरह के फूल लोगों को खूब आकर्षित करते हैं ना?
0: जी हाँ। देखिए, अभी हाल ही में मुझे एक जापानी दंपति के घर जाने का मौका मिला।
1: अच्छा,
0: उनका घर तो जैसे किसी परियों का घर लग रहा था।
1: अरे वाह, अच्छा ऐसा था, मतलब क्या था उसमें?
0: परियों की कहानी लग रही थी, मतलब उसका बाहर से बहुत ही सुंदर था।
1: अच्छा,
0: उनके देखिए घर की बाहरी दीवारों पर चारों ओर गुलाब की बेले लिपटी हुई थी।
1: ओ,
0: मतलब दो मंजिला मकान था तो अच्छा। बेले ऊपर दो मंजिला तक चढ़ी हुई थी। इतने तरह तरह की किस्में और इतने रंग बिरंगे गुलाब की आप कल्पना भी नहीं कर सकती। कुछ बेल की आयु तो 50 साल से अधिक थी।
1: अच्छा।
0: और वो प्यार से बता रहे थे कि ये बेल उन्होंने इस साल लगाई, ये उन्होंने इस साल लगाई। और एक ही घर में सैकड़ों की संख्या में गुलाब थे।
1: वाह, इतने फूल और इतने पेड़। लेकिन देखिए, देखरेख में भी खासी मेहनत लगती होगी उनको।
0: जी जी बिल्कुल लगती है। और देखिए ना, साल भर इन पेड़ों की फूलों की इतनी
1: सेवा करनी पड़ती
0: है। जी जी, सेवा करनी पड़ती है। और कुछ ही दिनों की फिर ये छटा बिखेर कर चले जाते हैं, ढेर सारी यादें और मन में ढेर सारी खूबसूरती देकर।
1: जी जी,
0: उनके घर के सामने से जो भी निकलता था वो पल भर के लिए तो ठिठक ही जाता था गुलाबों को निहारने के लिए।
1: देखिए, बीते कुछ दिनों हमने भी तो स्टूडियो में गुलाबों का आनंद लिया था ना?
0: जी
1: और,
0: हाँ।
1: हमारे श्रोता मित्रों ने हमारी साप्ताहिक रील में देखा ही होगा। लेकिन शांग्रीला जी, देखिए अब गुलाबों से रुक

0: करते हैं पत्रों की ओर, क्योंकि श्रोता मित्रों के साथ ही मुझे भी इंतजार है उनकी राय जानने का।
1: तो चलिए शुरू करते हैं सिलसिला। पहला पत्र है ओडिशा के सिंगा से। जगह का नाम सुनकर तो आप पहचान ही गई होंगी कि किसका पत्र है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, हमारे बहुत ही नियमित श्रोता मित्र सुरेश अग्रवाल जी का खत है आपके हाथ में। और देखिए, हर कार्यक्रम पर इतनी गहरी टिप्पणी दिया करते हैं, तो इस बार क्या लिखा है सुरेश जी ने?
1: लिखा है, सबसे पहले तो आदरणीय वायला जी एवं रोहिणी जी सस्ने नमस्कार।
0: सुरेश जी आपको भी बहुत बहुत नमस्कार।
1: आगे लिखा है, 17 मई को प्रसारित चेरी के देश से कार्यक्रम में श्रोता मित्रों के पत्रों एवं प्रतिक्रियाओं के उपरांत जापान की दैनिक जीवन शैली में साइकिल की महत्वपूर्ण भूमिका तथा साइकिल चलाते समय नियमों की अनदेखी करने पर लगाए जाने वाले ब्लू टिकट चालान संबंधी अत्यंत उपयोगी जानकारी सुनने को मिली।
0: अच्छा,
1: निसंदेह जापान में साइकिल की लगातार बनी लोकप्रियता वहां के लोगों की स्वास्थ्य जागरूकता और अनुशासित जीवन शैली का सशक्त उदाहरण प्रस्तुत करती है। इसी क्रम में विशाखापट्टनम के श्रोता भाई आर एस विजय कुमार द्वारा साहित्य सरिता के पुराने अंकों के बार बार पुनर्प्रसारण को लेकर व्यक्त की गई शिकायत भी पूरी तरह उचित प्रतीत हुई। इसे सुनकर ऐसा महसूस हुआ कि मानो एनएचके वर्ल्ड के कार्यक्रम निर्माण में कहीं न कहीं ठहराव आ गया है और नवीनता पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आशा है आप इस विषय पर गंभीरता पूर्वक विचार कर कार्यक्रमों में नई सामग्री एवं ताजगी बनाए रखने की दिशा में आवश्यक कदम उठाएंगे।
0: सुरेश जी, साइकिल के नए नियमों पर हमारी रिपोर्ट आपको पसंद आई, आभार। वैसे तो आमतौर पर जापान में लोग नियमों का बखूबी पालन करते हैं, लेकिन साइकिल सवारी के दौरान मोबाइल जैसे आधुनिक जमाने के साधनों के उपयोग से दुर्घटनाएं बढ़ रही थी। कारण तो और भी थे, इसलिए सख्ती करनी ही पड़ी। तो शंगरीला जी, आपकी क्या राय है? क्या अभी तक आप ब्लू टिकट से बची हुई हैं कि नहीं, ये बताइए।
1: अरे महेश वायला जी, मैं तो बहुत ही ध्यान से साइकिल चलाती हूँ।
0: अच्छा।
1: इसलिए अभी तक तो कोई चालान नहीं कटा, लेकिन नियमों में इतने सारे बिंदु हैं कि थोड़ा असमंजस भी हो रहा है कि कब कोई कहाँ गलती हो जाए, इसलिए साइकिल सवारी के दौरान थोड़ा और ज्यादा ध्यान देने लगी हूँ।
0: अरे मैं आपको एक बड़ा मजेदार किस्सा बताती
1: हूँ। अच्छा,
0: हाँ, कि लोग इन ब्लू टिकट से डरावने उनको सपने आने लग गए हैं।
1: अच्छा।
0: हाँ, ऐसा भी है। तो देखिए, जिस दिन से ये नियम लागू होने वाले थे, तो उससे एक दिन पहले रात को मेरे बेटे को सपना आया कि जैसे ही वो घर से बाहर निकला, पुलिस ने उसे पकड़ लिया। इतनी दहशत में था कि मैं सही से तो आज साइकिल चला पाऊंगा कि नहीं, तो उससे उसको सपने आने लगे।
1: जी, लोगों की नींदें उड़ी हुई है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो आप भी ध्यान रखिए, मैं भी रखूंगी। और सुरेश जी, जहां तक बात साहित्य सरिता के पुनर्प्रसारण की है, तो साहित्य प्रेमी श्रोता की शिकायत तो जायज है, लेकिन कार्यक्रमों में ठहराव की बात से मैं सहमत नहीं हूँ। क्योंकि देखिये, आप हमारी वेबसाइट पर शो के अगर पेज पर जाए तो आपको अलग अलग विषय वस्तु पर कई नई वीडियोस मिलेंगी। और जैसे बीते दिनों हमने कल्चर क्रॉसरोड यानी संस्कृति मेल कैटेगरी में अविस्मरणीय स्वाद पर एक वीडियो साझा की थी।
1: और जब इस वीडियो की लिंक फेसबुक पर साझा की गई, तो आप जानेंगे 16,000 लोगों ने इसे लाइक किया है।
0: अच्छा।
1: और साथ ही कई लोगों ने कमेंट करके अपने अपने पसंदीदा व्यंजनों की यादें सबके साथ बांटी। ज्यादातर लोगों के कमेंट में माँ के हाथ का स्वाद सबसे प्रिय है।
0: अच्छा।
1: कुछ अनोखे व्यंजनों के नाम भी पता चले। वायला जी, आपकी कोई ऐसी याद है जो किसी खास व्यंजन से जुड़ी है?
0: देखिए श्रृंगलीला जी, मुझे याद है कि मेरी माँ शक्करकंद के गुलाब जामुन बनाया करती थी।
1: अरे वाह, शक्करकंद के गुलाब जामुन, पहली बार सुन रही हूँ ये नाम।
0: ये इतने मुलायम होते हैं कि क्या कहूँ। अगर कभी आपको इसकी रेसिपी मिले तो आप भी जरूर बनाकर देखें। और अगर मैं जापान की बात करूं, तो जब मैं पहली बार जापान आई थी तो डिज्नीलैंड गई थी।
1: अच्छा।
0: और वहां मैंने पहली बार जापानी शैली की करी खाई थी, तो उसके बाद तो मैं जापानी करी की दीवानी हो गई थी।
1: वो डिज्नीलैंड की वजह से थी कि जापानी करी के स्वाद की वजह से?
0: पता नहीं उस दिन क्या था, लेकिन मैं बहुत बड़ी फैन हो गई जापानी करी की। और आप भी बताएं ना, आपको क्या पसंद है?
1: देखिए, एक खास याद तो मेरे कॉलेज के जमाने की है, जब मैं छात्र आदान प्रदान के दौरान राजस्थान से उड़ीसा में भुवनेश्वर।
0: अच्छा।
1: के पास जानला गांव में रुकी थी। उस समय जिनके आम ठहरे थे, वे कच्चे नारियल के स्टफ्ड पराठे बनाती थी।
0: अच्छा।
1: वैसे पराठे मैंने आज तक दोबारा नहीं खाए। उसके अलावा जब भी मैं अपने ननिहाल

0: संभाल जाती हूँ तो मेरे लिए पूरण पोली हमेशा ही बनती है। वो स्वाद मेरे लिए बहुत ही खास है।
1: अच्छा, तो मित्रों आप भी अपने किसी पसंदीदा व्यंजन की यादें हमसे जरूर साझा करें
0: और हो सके तो उसकी तस्वीर भी भेजें। और हाँ, कल्चर क्रॉस रोड यानी संस्कृति मेल में अविस्मरणीय स्वाद की वीडियो भी जरूर देखें और बताएं कि आपको कैसी लगी।
1: जी, अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और लेते हैं पश्चिम बंगाल पूर्वी बर्धमान से प्रदीप बसाक जी का ये लंबा सा पत्र। वाह वाह, आपने भी भोजन का ही जिक्र किया है।
0: अरे वाह, किस बारे में है?
1: देखिए, लिखते हैं, मैंने 12 मई को बिरयानी पर एक फेसबुक पोस्ट देखी थी। बिरयानी का नाम सुनते ही मन जैसे खुश हो उठता है। खुशबूदार चावल, नरम मांस, मसालों का अद्भुत मेल और गर्मा गर्म परोसने का अंदाज, सब मिलाकर बिरयानी केवल एक भोजन नहीं बल्कि एक भावना, एक याद और लोगों को जोड़ने वाला खास एहसास है। हमारे यहाँ भी बिरयानी की लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। प्रियजनों के साथ एक प्लेट बिरयानी बांटकर खाने की खुशी सचमुच अलग ही आनंद देती है। आज के समय में बिरयानी केवल खाने की सूची तक सीमित नहीं है बल्कि ये बहुत से लोगों की रोजी रोटी और सपनों से भी जुड़ी हुई है।
0: अरे वाह।
1: विशेष रूप से भारतीय और नेपाली रसोइयों के हाथों से बनी बिरयानी जापान सहित दुनिया के कई देशों में बेहद लोकप्रिय हो चुकी है। विदेश की धरती पर अपनी संस्कृति और स्वाद की पहचान बनाए रखना वास्तव में गर्व की बात है।
0: जी बिल्कुल।
1: लेकिन देखिए, दुख की बात यह है कि जापान में नए वीजा संबंधी कुछ नियम विदेशी रसोइयों और रेस्तरां व्यवसायियों के लिए बड़ी चिंता का कारण बन गए हैं। जिन्होंने वर्षों की मेहनत से अपनी पहचान बनाई, आज वे अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। काम खोने का डर और देश छोड़ने की आशंका उनके सपनों को धीरे धीरे धुंधला कर रही है। एक रसोइया केवल खाना नहीं बनाता बल्कि वो अपने अनुभव, संस्कृति और प्रेम को भी लोगों तक पहुंचाता है।
0: सही कहा।
1: इसलिए ऐसे कुशल लोगों को खो देना केवल व्यापार की हानि नहीं बल्कि सांस्कृतिक विविधता की भी क्षति है। उम्मीद है कि भविष्य में ऐसे निर्णय लिए जाएंगे जिनसे विदेशी रसोइये और रेस्तरां व्यवसायी सुरक्षित रूप से काम कर सकें और दुनिया भर में बिरयानी की ये स्वादिष्ट परंपरा और भी अधिक फैल सके।
0: प्रदीप जी, इतने विस्तार से अपनी राय साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार। आशा करते हैं कि सभी का मंगल हो और किसी की भी रोजी रोटी का नुकसान ना हो और बिरयानी का ये स्वाद हमेशा लोगों की जुबान पर बना रहे। और देखिए, अब समय हो चला है श्रोताओं को फ्रीक्वेंसी बताने का, तो मित्रों फटाफट नोट करें हमारी फ्रीक्वेंसी।
2: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।
1: दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से चेरी के देश से कार्यक्रम में। अब देखिए, टोक्यो से रुमा गुप्ता ने पंकज त्रिपाठी के साथ हुई भेंटवार्ता की सराहना की है। लिखती हैं, पंकज त्रिपाठी के साथ हुई भेंटवार्ता ने मंत्र मुग्ध कर दिया। इसे सुनाने के लिए धन्यवाद। भविष्य में भी ऐसी वार्ताएं सुनाएं।
0: रुमा जी, NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा परिवार में आपका स्वागत है और कार्यक्रम पसंद करने के लिए शुक्रिया।
1: जी,
0: वादा रहा आगे भी ऐसी रोचक वार्ताएं जरूर सुनाएंगे और आप भी हमसे वादा करें कि आप पत्रों का ये सिलसिला जारी रखेंगे। और ये अगला पत्र है झारखंड जमशेदपुर से SB शर्मा जी का। अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप की हालिया चीन यात्रा पर उन्होंने अपनी राय दी है।
1: अच्छा।
0: और साथ ही लिखा है, देश दुनिया के समाचार सुनाने के लिए NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा को धन्यवाद।
1: शर्मा जी, पत्र के लिए धन्यवाद। आगे भी कार्यक्रम सुने और अपनी राय से अवगत कराएं। अब देखिए, जयपुर से पथिक जैन जी ने लिखा है कि चेरी के देश से कार्यक्रम की टीम को मेरा नमस्कार। मैं आपका कार्यक्रम समय समय पर अवसर मिलने पर सुनता हूँ। मुझे लगता है कि आप नियमित लिखने वालों के ही पत्र शामिल करते हैं। शंगरीला जी, देखिए थोड़ी सी शिकायत है इनकी।
0: ऐसी बात बिल्कुल नहीं है पथिक जी।
1: देखिए आगे कह रहे हैं कि मैंने अनेक बार पत्र लिखे परंतु मेरे पत्र को शामिल नहीं किया गया। मैंने सुझाव भी दिया था कि जो श्रोता ऑनलाइन उपलब्ध कार्यक्रम

0: वो उस समय में डाउनलोड कर सकें और सुविधानुसार सुन सकें। अभिनेता पंकज त्रिपाठी जी से साक्षात्कार के तीनों भाग सुने। पंकज त्रिपाठी जी जमीन से जुड़े अद्भुत प्रतिभा के धनी व्यक्ति हैं। उनकी बातों से ऐसा लगा कि ये हमारे बीच के ही हैं।
1: वाह, पंकज जी को लोग आज भी याद कर रहे हैं
0: जी।
1: और पथिक जी, कार्यक्रम पसंद आया ये जानकर बहुत अच्छा लगा हमारे लिए। देखिए, सभी श्रोता बहुत प्रिय हैं, सभी बराबर हैं। जब भी हमें आप लोगों के पत्र मिलते हैं, हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करते हैं। हाँ, शायद कभी थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन कोताही तो कतई नहीं। लेकिन शिकायत तो हमारी ओर से भी है कि आप बड़े दिनों बाद हमें याद कर रहे हैं।
0: हाँ, पहले तो काफी जल्दी जल्दी पत्र इनके मिला करते थे
1: जी,
0: लेकिन अब पता नहीं कहाँ व्यस्त हो गए हैं। वैसे हम आपको बता दें कि प्रसारित होने वाले हमारे अधिकांश कार्यक्रमों का आनंद एक सप्ताह तक तो आप ले ही सकते हैं
1: जी। और वहीं देखिए, कुछ कार्यक्रमों की वीडियो तो साल भर उपलब्ध रहती हैं
0: जी।
1: जापान की रेलगाड़ियों, प्राकृतिक नजारों आदि पर कई वीडियो हैं हमारी वेबसाइट पर। बीते सप्ताह टोक्यो का जौहरी बाजार कहे जाने वाले ओकाचीमाची इलाके पर भी एक वीडियो प्रेषित की गई है।
0: ओकाचीमाची तो देखिए, यहाँ कई भारतीय जौहरियों के भी कार्यालय और दुकानें हैं और काफी रोचक जगह है
1: जी। हाँ, वहाँ जाएंगे तो आपको अक्सर भारतीय लोगों की लोग घूमते हुए दिख जाएंगे।
0: अच्छा।
1: खूब रौनक भी रहती है।
0: अच्छा।
1: और आजकल विदेशी ग्राहकों की वहाँ संख्या भी बढ़ रही है। और इस कार्यक्रम की लिंक फेसबुक पर साझा की गई, जिस पर ऋषि सिंघवी ने ढेर सारे इमोजी के जरिए भारत और जापान के बीच संबंधों को बड़े मजेदार तरीके से दिखाया है। भारत को दर्शाते हॉकी, क्रिकेट और तिरंगा के इमोजी हैं, तो जापान का प्रसिद्ध तोरी गेट, हीना मात्सुरी की गुड़िया और राइजिंग सन है।
0: अच्छा, और देखिए ऋषि जी का एक कमेंट और भी है, उसमें इन्होंने लिखा है कि जापान और भारत के बीच खूबसूरत संबंध है। भारत जहां मैं पैदा हुआ और जापान जहां मैं काम करता हूं। हम ओकाचीमाची और यहां बसे भारतीय समुदाय पर और कार्यक्रम देखना चाहेंगे।
1: अच्छा ऋषि जी, यकीनन कोशिश करेंगे
0: जी जी।
1: और वायला जी, जैसे भारत में जापानी एनिमे बहुत लोकप्रिय है, वैसे अब जापानी संगीत भी लोकप्रिय होने लगा है।
0: अरे वाह, ये तो आपने अच्छी खबर दी
1: जी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रख्यात जापानी गायक फूजी खाजे ने भारत में कॉन्सर्ट किया जो बिल्कुल हाउसफुल गया।
0: अच्छा, ऐसी बात है क्या? तो मुझे लगता है शायद भारत में कॉन्सर्ट करने वाले वे पहले जापानी कलाकार हैं, उन्हें भारत से खास लगाव भी है।
1: जी हाँ, उनका परिवार भारत के अध्यात्म से काफी प्रभावित है। उन्होंने NHK के टाइनी डेस्क कॉन्सर्ट जापान कार्यक्रम में शिरकत की थी और अपने गीतों की लड़ियों से दर्शकों को आनंद विभोर कर दिया। इस कार्यक्रम की वीडियो भी वेबसाइट पर शो कैटेगरी में उपलब्ध है। गानों के सबटाइटल अंग्रेजी में है तो बोल समझना आसान है।
0: तो शांग्रीला जी, क्यों ना आज कार्यक्रम में श्रोताओं को फूजी खाजे का ही एक गीत सुनाया जाए। तो ये गीत है ग्रेस, और आपको बता दें कि इस गीत को भारत के कई शहरों में शूट किया गया है, जिसमें हरिद्वार भी है और इसमें स्थानीय लोगों को भी देखा जा सकता है।

0: दोस्तों आशा है आपको भारत में फिल्माया ये गीत पसंद आया होगा और अब जाने की अनुमति दीजिए अपनी सखी शांग्रीला जैन को
1: और वायला खवालो को।
0: सायोनारा, नमस्कार।

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

0: यह है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। स्वागत है सभी श्रोताओं का आपके मनपसंद कार्यक्रम चेरी के देश से में। उगते सूर्य के देश से सबसे पहले स्वीकार करें अपनी सखी शांग्रीला जैन का कोनिचिवा, नमस्कार और आदाब।
1: सभी दोस्तों को वायला खवानो का भी कोनिचिवा, नमस्कार। फिर आया एक नया रविवार और साथ ही लेकर आ गए हम आपके पत्रों के जवाब और जापान के बारे में कई जानी अनजानी रोचक बातें।
0: और बताएं वैला जी, इस गर्मी में क्या हाल है?
1: शंग्रीला जी, हाल तो एकदम बढ़िया है। देखिए, कभी मौसम का मिजाज ऊपर नीचे हो जाता है, तो कभी तेज गर्मी हो जाती है, तो कभी पारा लुढ़क जाता है, तो मौसम कभी कभी सुहावना भी हो जाता है।
0: सही कहा आपने, बीते सप्ताह तो तापमान ऐसा चढ़ा कि लगा गर्मियां आ गई।
1: हाँ,
0: फिर बारिश की बौछार ने कुछ राहत दी और साथ ही इन दिनों देखिए जगह जगह खिल रहे गुलाब के फूल भी खूब खुशियां बिखेर रहे हैं।
1: हाँ, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। देखिए, साकुरा की बहार के बाद तो जैसे प्रकृति चहु ओर खिल जाती है। एक के बाद एक अलग अलग तरह तरह के फूल लोगों को खूब आकर्षित करते हैं ना?
0: जी हाँ। देखिए, अभी हाल ही में मुझे एक जापानी दंपति के घर जाने का मौका मिला।
1: अच्छा,
0: उनका घर तो जैसे किसी परियों का घर लग रहा था।
1: अरे वाह, अच्छा ऐसा था, मतलब क्या था उस
0: परियों की कहानी लग रही थी, मतलब उसका बाहर से बहुत ही सुंदर था।
1: अच्छा,
0: उनके देखिए घर की बाहरी दीवारों पर चारों ओर गुलाब की बेले लिपटी हुई थी।
1: ओ,
0: मतलब दो मंजिला मकान था तो बेले ऊपर दो मंजिला तक चढ़ी हुई थी। इतने तरह तरह की किस्में और इतने रंग बिरंगे गुलाब की आप कल्पना भी नहीं कर सकती। कुछ बेल की आयु तो 50 साल से अधिक थी।
1: अच्छा,
0: और वो प्यार से बता रहे थे कि ये बेल उन्होंने इस साल लगाई, ये उन्होंने इस साल लगाई। और एक ही घर में सैकड़ों की संख्या में गुलाब थे।
1: वाह, इतने फूल और इतने पेड़। लेकिन देखिए, देखरेख में भी खासी मेहनत लगती होगी उनको।
0: जी जी बिल्कुल लगती है। और देखिए ना, साल भर इन पेड़ों की फूलों की इतनी
1: सेवा करनी पड़ती
0: है। जी जी, सेवा करनी पड़ती है। और कुछ ही दिनों की फिर ये छटा बिखेर कर चले जाते हैं, ढेर सारी यादें और मन में ढेर सारी खूबसूरती देखकर।
1: जी जी,
0: उनके घर के सामने से जो भी निकलता था वो पल भर के लिए तो ठिठक ही जाता था गुलाबों को निहारने के लिए।
1: देखिए, बीते कुछ दिनों हमने भी तो स्टूडियो में गुलाबों का आनंद लिया था ना?
0: जी हाँ।
1: हमारे श्रोता मित्रों ने हमारी साप्ताहिक रील में देखा ही होगा। लेकिन शांग्रीला जी, देखिए अब गुलाबों से रुख करते हैं पत्रों की ओर, क्योंकि श्रोता मित्रों के साथ ही मुझे भी इंतजार है उनकी राय जानने का।
0: तो चलिए शुरू करते हैं सिलसिला। पहला पत्र है ओडिशा के सिंगा से। जगह का नाम सुनकर तो आप पहचान ही गई होंगी कि किसका पत्र है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, हमारे बहुत ही नियमित श्रोता मित्र सुरेश अग्रवाल जी का खत है आपके हाथ में। और देखिए, हर कार्यक्रम पर इतनी गहरी टिप्पणी दिया करते हैं, तो इस बार क्या लिखा है सुरेश जी ने?
0: लिखा है, सबसे पहले तो आदरणीय वायला जी एवं रोहिणी जी सस्ने नमस्कार।
1: सुरेश जी, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार।
0: आगे लिखा है, 17 मई को प्रसारित चेरी के देश से कार्यक्रम में श्रोता मित्रों के पत्रों एवं प्रतिक्रियाओं के उपरांत जापान की दैनिक जीवन शैली में साइकिल की महत्वपूर्ण भूमिका तथा साइकिल चलाते समय नियमों की अनदेखी करने पर लगाए जाने वाले ब्लू टिकट चालान संबंधी अत्यंत उपयोगी जानकारी सुनने को मिली।
1: अच्छा,
0: निसंदेह जापान में साइकिल की लगातार बनी लोकप्रियता वहां के लोगों की स्वास्थ्य जागरूकता और अनुशासित जीवन शैली का सशक्त उदाहरण प्रस्तुत करती है। इसी क्रम में विशाखापट्टनम के श्रोता भाई आर एस विजय कुमार द्वारा साहित्य सरिता के पुराने अंकों के बार बार पुनर्प्रसारण को लेकर व्यक्त की गई शिकायत भी पूरी तरह उचित प्रतीत हुई। इसे सुनकर ऐसा महसूस हुआ कि मानो NHK वर्ल्ड के कार्यक्रम निर्माण में कहीं न कहीं ठहराव आ गया है और नवीनता पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आशा है आप इस विषय पर गंभीरता पूर्वक विचार कर कार्यक्रमों में नई सामग्री एवं ताजगी बनाए रखने की दिशा में आवश्यक कदम उठाएंगे।
1: सुरेश जी, साइकिल के नए नियमों पर हमारी रिपोर्ट आपको पसंद आई, आभार। वैसे तो आमतौर पर जापान में लोग नियमों का बखूबी पालन करते हैं, लेकिन साइकिल सवारी के दौरान मोबाइल जैसे आधुनिक जमाने के साधनों के उपयोग से दुर्घटनाएं बढ़ रही थी। कारण तो और भी थे, इसलिए सख्ती करनी ही पड़ी। तो शंग्रीला जी, आपकी क्या राय है, क्या अभी तक आप ब्लू टिकट से बची हुई हैं कि नहीं, ये बताइए।
0: अरे भाई श्वायला जी, मैं तो बहुत ही ध्यान से साइकिल चलाती हूँ।
1: अच्छा।
0: इसलिए अभी तक तो कोई चालान नहीं कटा, लेकिन नियमों में इतने सारे बिंदु हैं कि थोड़ा असमंजस भी हो रहा है कि कब कोई कहाँ गलती हो जाए, इसलिए साइकिल सवारी के दौरान थोड़ा और ज्यादा ध्यान देने लगी हूँ।
1: अरे मैं आपको एक बड़ा मजेदार किस्सा बताती हूँ।
0: अच्छा,
1: हाँ, कि लोग इन ब्लू टिकट से डरावने उनको सपने आने लग गए हैं।
0: अच्छा।
1: हाँ ऐसा भी है। तो देखिए, जिस दिन से ये नियम लागू होने वाले थे, तो उससे एक दिन पहले रात को मेरे बेटे को सपना आया कि जैसे ही वो घर से बाहर निकला, पुलिस ने उसे पकड़ लिया। तो वो इतनी दहशत में था कि मैं सही से तो आज साइकिल चला पाऊंगा कि नहीं, तो उससे उसको सपने आने लगे।
0: जी, लोगों की नींदें उड़ी हुई है।
1: बिल्कुल, तो आप भी ध्यान रखिए, मैं भी रखूंगी। और सुरेश जी, जहाँ तक बात साहित्य सरिता के पुनर्प्रसारण की है, तो साहित्य प्रेमी श्रोता की शिकायत तो जायज है, लेकिन कार्यक्रमों में ठहराव की बात से मैं सहमत नहीं हूँ। क्योंकि देखिए, आप हमारी वेबसाइट पर शो के अगर पेज पर जाएं, तो आपको अलग अलग विषय वस्तु पर कई नई वीडियोस मिलेंगी। और जैसे बीते दिनों हमने कल्चर क्रॉसरोड यानी संस्कृति मेल कैटेगरी में अविस्मरणीय स्वाद पर एक वीडियो साझा की थी।
0: और जब इस वीडियो की लिंक फेसबुक पर साझा की गई, तो आप जानेंगे 16,000 लोगों ने इसे लाइक किया है।
1: अच्छा।
0: और साथ ही कई लोगों ने कमेंट करके अपने अपने पसंदीदा व्यंजनों की यादें सबके साथ बांटी। ज्यादातर लोगों के कमेंट में माँ के हाथ का स्वाद सबसे प्रिय है।
1: अच्छा।
0: कुछ अनोखे व्यंजनों के नाम भी पता चले। वायला जी, आपकी कोई ऐसी याद है जो किसी खास व्यंजन से जुड़ी है?
1: देखिए श्रृंगलीला जी, मुझे याद है कि मेरी माँ शक्करकंद के गुलाब जामुन बनाया करती थी।
0: शक्करकंद के गुलाब जामुन, पहली बार सुन रही हूँ ये नाम।
1: ये इतने मुलायम होते हैं कि क्या कहूँ। अगर कभी आपको इसकी रेसिपी मिले तो आप भी जरूर बनाकर देखें। और अगर मैं जापान की बात करूँ, तो जब मैं पहली बार जापान आई थी, तो डिज्नीलैंड गई थी।
0: अच्छा।
1: और वहाँ मैंने पहली बार जापानी शैली की करी खाई थी, तो उसके बाद तो मैं जापानी करी की दीवानी हो गई थी।
0: वो डिज्नीलैंड की वजह से थी कि जापानी करी के स्वाद की वजह से?
1: पता नहीं उस दिन क्या था, लेकिन मैं बहुत बड़ी फैन हो गई जापानी करी की। और आप भी बताएं ना, आपको क्या पसंद है?
0: देखिए, एक खास याद तो मेरे कॉलेज के जमाने की है, जब मैं छात्र आदान प्रदान के दौरान राजस्थान से उड़ीसा में भुवनेश्वर।
1: अच्छा।
0: के पास जानला गाँव में रुकी थी। उस समय जिनके आम ठहरे थे, वे कच्चे नारियल के स्टफ्ड पराठे बनाती थी।
1: अच्छा।
0: वैसे पराठे मैंने आज तक दोबारा नहीं खाए। उसके अलावा जब भी मैं अपने ननिहाल जाती हूँ, तो मेरे लिए पूरण पोली हमेशा ही बनती है। वो स्वाद मेरे लिए बहुत ही खास है।
1: अच्छा। तो मित्रों, आप भी अपने किसी पसंदीदा व्यंजन की यादें हमसे जरूर साझा करें,
0: और हो सके तो उसकी तस्वीर भी भेजें। और हाँ, कल्चर क्रॉसरोड यानी संस्कृति मेल में अविस्मरणीय स्वाद की वीडियो भी जरूर देखें और बताएं कि आपको कैसी लगी।
1: जी, अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और लेते हैं पश्चिम बंगाल पूर्वी बर्धमान से प्रदीप बसाक जी का ये लंबा सा पत्र। वाह वाह, आपने भी भोजन का ही जिक्र किया है।
0: अरे वाह, किस बारे में है?
1: देखिए, लिखते हैं, मैंने 12 मई को बिरयानी पर एक फेसबुक पोस्ट देखी थी। बिरयानी का नाम सुनते ही मन जैसे खुश हो उठता है। खुशबूदार चावल, नरम मांस, मसालों का अद्भुत मेल और गर्मा गर्म परोसने का अंदाज, सब मिलाकर बिरयानी केवल एक भोजन नहीं बल्कि एक भावना, एक याद और लोगों को जोड़ने वाला खास एहसास है। हमारे यहाँ भी बिरयानी की लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। प्रियजनों के साथ एक प्लेट बिरयानी बांटकर खाने की खुशी सचमुच अलग ही आनंद देती है। आज के समय में बिरयानी केवल खाने की सूची तक सीमित नहीं है, बल्कि ये बहुत से लोगों की रोजी रोटी और सपनों से भी जुड़ी हुई है।
0: अरे वाह।
1: विशेष रूप से भारतीय और नेपाली रसोइयों के हाथों से बनी बिरयानी जापान सहित दुनिया के कई देशों में बेहद लोकप्रिय हो चुकी है। विदेश की धरती पर अपनी संस्कृति और स्वाद की पहचान बनाए रखना वास्तव में गर्व की बात है।
0: जी बिल्कुल।
1: लेकिन देखिए, दुख की बात यह है कि जापान में नए वीजा संबंधी कुछ नियम विदेशी रसोइयों और रेस्तरां व्यवसायियों के लिए बड़ी चिंता का कारण बन गए हैं। जिन्होंने वर्षों की मेहनत से अपनी पहचान बनाई, आज वे अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। काम खोने का डर और देश छोड़ने की आशंका उनके सपनों को धीरे धीरे धुंधला कर रही है। एक रसोइया केवल खाना नहीं बनाता, बल्कि वो अपने अनुभव, संस्कृति और प्रेम को भी लोगों तक पहुँचाता है।
0: सही कहा।
1: इसलिए ऐसे कुशल लोगों को खो देना केवल व्यापार की हानि नहीं बल्कि सांस्कृतिक विविधता की भी क्षति है। उम्मीद है कि भविष्य में ऐसे निर्णय लिए जाएंगे जिनसे विदेशी रसोइये और रेस्तरां व्यवसायी सुरक्षित रूप से काम कर सकें और दुनिया भर में बिरयानी की ये स्वादिष्ट परंपरा और भी अधिक फैल सके।
0: प्रदीप जी, इतने विस्तार से अपनी राय साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार। आशा करते हैं कि सभी का मंगल हो और किसी की भी रोजी रोटी का नुकसान ना हो और बिरयानी का ये स्वाद हमेशा लोगों की जुबान पर बना रहे। और देखिए, अब समय हो चला है श्रोताओं को फ्रीक्वेंसी बताने का, तो मित्रों फटाफट नोट करें हमारी फ्रीक्वेंसी।
2: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्ट वेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।
1: दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से चेरी के देश से कार्यक्रम में। अब देखिए, टोक्यो से रुमा गुप्ता ने पंकज त्रिपाठी के साथ हुई भेंटवार्ता की सराहना की है। लिखती हैं, पंकज त्रिपाठी के साथ हुई भेंटवार्ता ने मंत्र मुग्ध कर दिया। इसे सुनाने के लिए धन्यवाद। भविष्य में भी ऐसी वार्ताएं सुनाएं।
0: रुमा जी, NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा परिवार में आपका स्वागत है और कार्यक्रम पसंद करने के लिए शुक्रिया
1: जी।
0: वादा रहा आगे भी ऐसी रोचक वार्ताएं जरूर सुनाएंगे और आप भी हमसे वादा करें कि आप पत्रों का ये सिलसिला जारी रखेंगे। और ये अगला पत्र है झारखंड जमशेदपुर से SB शर्मा जी का। अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप की हालिया चीन यात्रा पर उन्होंने अपनी राय दी है।
1: अच्छा।
0: और साथ ही लिखा है, देश दुनिया के समाचार सुनाने के लिए NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा को धन्यवाद।
1: शर्मा जी, पत्र के लिए धन्यवाद। आगे भी कार्यक्रम सुने और अपनी राय से अवगत कराएं। अब देखिए, जयपुर से पथिक जैन जी ने लिखा है कि चेरी के देश से कार्यक्रम की टीम को मेरा नमस्कार। मैं आपका कार्यक्रम समय समय पर अवसर मिलने पर सुनता हूँ। मुझे लगता है कि आप नियमित लिखने वालों के ही पत्र शामिल करते हैं। शंगरीला जी, देखिए थोड़ी सी शिकायत है इनकी।
0: ऐसी बात बिल्कुल नहीं है पथिक जी।
1: देखिए आगे कह रहे हैं कि मैंने अनेक बार पत्र लिखे परंतु मेरे पत्र को शामिल नहीं किया गया। मैंने सुझाव भी दिया था कि जो श्रोता ऑनलाइन उपलब्ध कार्यक्रम को उस समय में डाउनलोड कर सकें और सुविधानुसार सुन सकें। अभिनेता पंकज त्रिपाठी जी से साक्षात्कार के तीनों भाग सुने। पंकज त्रिपाठी जी जमीन से जुड़े अद्भुत प्रतिभा के धनी व्यक्ति हैं। उनकी बातों से ऐसा लगा कि ये हमारे बीच के ही हैं।
0: वाह, पंकज जी को लोग आज भी याद कर रहे हैं
1: जी।
0: और पथिक जी, कार्यक्रम पसंद आया ये जानकर बहुत अच्छा लगा हमारे लिए। देखिए, सभी श्रोता बहुत प्रिय हैं, सभी बराबर हैं। जब भी हमें आप लोगों के पत्र मिलते हैं हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करते हैं। हाँ, शायद कभी थोड़ी देरी हो सकती है लेकिन कोताही तो कतई नहीं। लेकिन शिकायत तो हमारी ओर से भी है कि आप बड़े दिनों बाद हमें याद कर रहे हैं।
1: हाँ, पहले तो काफी जल्दी जल्दी पत्र इनके मिला करते थे
0: जी,
1: लेकिन अब पता नहीं कहाँ व्यस्त हो गए हैं। वैसे हम आपको बता दें कि प्रसारित होने वाले हमारे अधिकांश कार्यक्रमों का आनंद एक सप्ताह तक तो आप ले ही सकते हैं
0: जी। और वहीं देखिए, कुछ कार्यक्रमों की वीडियो तो साल भर उपलब्ध रहती हैं
1: जी।
0: जापान की रेलगाड़ियों, प्राकृतिक नजारों आदि पर कई वीडियो हैं हमारी वेबसाइट पर। बीते सप्ताह टोक्यो का जौहरी बाजार कहे जाने वाले ओकाची माची इलाके पर भी एक वीडियो प्रेषित की गई है।
1: ओकाची माची तो देखिए, यहाँ कई भारतीय जौहरियों के भी कार्यालय और दुकानें हैं और काफी रोचक जगह है
0: जी। हाँ, वहाँ जाएंगे तो आपको अक्सर भारतीय लोगों की लोग घूमते हुए दिख जाएंगे।
1: अच्छा।
0: खूब रौनक भी रहती है।
1: अच्छा।
0: और आजकल विदेशी ग्राहकों की वहाँ संख्या भी बढ़ रही है। और इस कार्यक्रम की लिंक फेसबुक पर साझा की गई, जिस पर ऋषि सिंघवी ने ढेर सारे इमोजी के जरिए भारत और जापान के बीच संबंधों को बड़े मजेदार तरीके से दिखाया है। भारत को दर्शाते हॉकी, क्रिकेट और तिरंगा के इमोजी हैं, तो जापान का प्रसिद्ध तोरी गेट, हीना मात्सुरी की गुड़िया और राइजिंग सन है।
1: अच्छा। और देखिए, ऋषि जी का एक कमेंट और भी है, उसमें इन्होंने लिखा है कि जापान और भारत के बीच खूबसूरत संबंध है। भारत जहाँ मैं पैदा हुआ और जापान जहाँ मैं काम करता हूँ। हम ओकाची माची और यहाँ बसे भारतीय समुदाय पर और कार्यक्रम देखना चाहेंगे।
0: अच्छा ऋषि जी, यकीनन कोशिश करेंगे।
1: जी जी।
0: और वायला जी, जैसे भारत में जापानी एनिमे बहुत लोकप्रिय है, वैसे अब जापानी संगीत भी लोकप्रिय होने लगा है।
1: अरे वाह, ये तो आपने अच्छी खबर दी।
0: जी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रख्यात जापानी गायक फूजी खाजे ने भारत में कॉन्सर्ट किया जो बिल्कुल हाउसफुल गया।
1: अच्छा, ऐसी बात है क्या? तो मुझे लगता है शायद भारत में कॉन्सर्ट करने वाले वे पहले जापानी कलाकार हैं, उन्हें भारत से खास लगाव भी है।
0: जी हाँ, उनका परिवार भारत के अध्यात्म से काफी प्रभावित है। उन्होंने NHK के टाइनी डेस्क कॉन्सर्ट्स जापान कार्यक्रम में शिरकत की थी और अपने गीतों की लड़ियों से दर्शकों को आनंद विभोर कर दिया। इस कार्यक्रम की वीडियो भी वेबसाइट पर शो कैटेगरी में उपलब्ध है। गानों के सबटाइटल अंग्रेजी में है तो बोल समझना आसान है।
1: तो शांग्रीला जी, क्यों ना आज कार्यक्रम में श्रोताओं को फूजी खाजे का ही एक गीत सुनाया जाए। तो ये गीत है ग्रेस, और आपको बता दें कि इस गीत को भारत के कई शहरों में शूट किया गया है, जिसमें हरिद्वार भी है, और इसमें स्थानीय लोगों को भी देखा जा सकता है।

0: दोस्तों, आशा है आपको भारत में फिल्माया ये गीत पसंद आया होगा। और अब जाने की अनुमति दीजिए अपनी सखी शांग्रीला जैन को
1: और वायला खमालो को।
0: सायोनारा, नमस्कार।

0: जब टुकड़ों का रंग हल्का भूरा हो जाए तो उन्हें पलट कर दोबारा ढांप दीजिए। 3 से 4 मिनट के बाद देखिए कि गोश्त मुकम्मल तौर पर गल गया है या नहीं। अगर ये पक चुका हो तो पैन से निकाल लीजिए। अगर मुर्गी के गोश्त का कोई टुकड़ा पैन की सतह से चिपक जाए तो किसी गीले कपड़े से इसकी सतह को ठंडा कीजिए। इस तरह चिपका हुआ टुकड़ा उतर जाएगा। इसके बाद हम शिमेजी खुम्बियाँ पकाएंगे।
1: शिमेजी खुम्बियों को फ्राइंग पैन में फैलाकर उन पर थोड़ा नमक छिड़क दें। ढके बगैर धीमी आंच पर पकाएं और इस दौरान उन्हें उलट पुलट करते रहें। जब उनकी रंगत हल्की भूरी हो जाए और ये नरम हो जाएं, तो आंच बंद कर दीजिए। दाशी यखनी और सोया सॉस में डूबी हुई सब्जियों को बाहर निकाल कर खुश कर लीजिए। उन्हें एक प्लेट में तरतीब दीजिए। पके हुए मुर्गी के टुकड़ों को 1 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टियों की शक्ल में काट लीजिए। मुर्गी और शिमेजी खुम्बियों को इन सब्जियों पर फैला दीजिए।
2: おひたしサラダの出来上がりです。出来上がりにごまを散らしても美味しいですよ。
0: おひたしサラダ तैयार है। अगर इस पर तिलों का इजाफा कर दिया जाए तो लज़त में कुछ और इजाफा हो जाएगा।
1: तो सामिन अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी तरकीब की जानिब, जो है श्रिंप और एवोकाडो सलाद। ये तरकीब 4 अफराद के लिए है। इसके लिए आपको दरकार होंगे झींगे 8 अदद या 160 ग्राम, 1 एवोकाडो, 10 अदद छोटे टमाटर और सलाद के 3 पत्ते। ड्रेसिंग तैयार करने के लिए आपको दरकार होगी 1.5 खाने का चम्मच सोया सॉस, 1 खाने का चम्मच लीमू का रस, 5 ग्राम अदरक और 20 ग्राम प्याज। इसके अलावा झींगों को उबालने के लिए आपको चाहिए 1/2 चाय का चम्मच नमक। और एवोकाडो की रंगत बरकरार रखने के लिए ज़रूरत होगी 1 चाय के चम्मच लीमू के रस की। इस तरकीब में हम कुल निसफ लीमू का रस इस्तेमाल कर रहे हैं।
0: तो आइए शुरू करते हैं। आज हम जो झींगे इस्तेमाल करेंगे उनके सर हटा दिए गए हैं, लेकिन खोल मौजूद हैं और उनकी लंबाई तकरीबन 6 सेंटीमीटर है। किसी कांटे या लकड़ी की सीख को इस्तेमाल करते हुए झींगे की अंदरूनी आंत साफ कर दीजिए। झींगे के खोल पर बाहर की सिम जोड़ों के दरमियान में एक कट लगाइए और अंदरूनी आंत को बाहर निकाल लीजिए। अगर आप कई जगहों से इसे निकालने की कोशिश करेंगे तो इसे साफ कर पाएंगे।
1: जब अंदरूनी आंत साफ हो जाए तो एक बर्तन में 200 मिलीलीटर पानी उबालिए। इसमें कुछ नमक का इजाफा करके खोल के आखिरी हिस्से समेत झींगे को इसमें डाल दीजिए। झींगों को धीमी आंच पर 2 मिनट तक पकाइए, यहां तक कि उनका खोल सुर्ख और गोश्त सफेद रंगत इख्तियार कर ले।
2: こうして塩水で茹でることによってエビに下味の塩味が染みます。殻をつけたまま茹でた方が、
0: ジンゴをナムキンパニメウバルネセインケザ、ブニアディザケメイザファホジャタイ、アラガジンゴンコウホウサメイトウバラジャイ、トジンゴンカハルカザイカバカラー、オゴシピナムレタヘ。
1: ジャブジンゲタヤーホジャイトウネザダナパカイ、オアプレートメンニカーレイ。झींगों को उबालने के बाद बर्तन में बच जाने वाली यखनी को भी उसी प्लेट में उंडेल दीजिए ताकि झींगे उसमें डूब से जाएं। अब बारी है सब्जियों की। एवोकाडो को लंबाई में निसफ काट कर दोनों अतराफ को बल दीजिए, यहां तक कि वो 2 अलग हो जाएं। गुठली बाहर निकाल लीजिए। छिलका उतारने के बाद इन निसफ टुकड़ों को लंबाई में काट कर हर टुकड़े के आर पार छुरी चलाते हुए 1 सेंटीमीटर के छोटे टुकड़े काट लीजिए। रंगत बरकरार रखने के लिए उन पर थोड़ा सा लीमू का रस डाल दीजिए।
0: छोटे टमाटरों के पत्ते और डंठल हटा दीजिए, उन्हें लंबाई में निस्फ कर लीजिए। सलाद के पत्तों को भी 4 सेंटीमीटर के चौकोर टुकड़ों में काट लीजिए।
1: सब्जियां तैयार करने के बाद अब हम ड्रेसिंग बनाएंगे।
2: 今日のこのサラダのポイントはドレッシングにあります。今日のドレッシングは油を使わないドレッシングです。
0: इस सलाद में ड्रेसिंग को कलीदी हैसियत हासिल है। सोया सॉस से तैयार की जाने वाली इस खुशबूदार ड्रेसिंग में तेल इस्तेमाल नहीं किया जाता।
1: सबसे पहले एक बर्तन में

0: गोभी के छोटे छोटे टुकड़े करके कुछ मिनट के लिए उबाल लें। उसमें अगर नमक भी डाल दिया जाए तो अच्छा ही है। गोभी जब नरम हो जाए तो गर्म पानी से निकाल कर ठंडे पानी में डाल दीजिए और सलाद में शामिल कर लीजिए।
1: चैलेंज, इस चैलेंज में तो आप हो गई पास। अब मेरे पास एक और सवाल है, और सवाल ये है कि शिमी जी, मशरूम का क्या करें? हमारे यहाँ तो एक ही किस्म का मशरूम ज्यादा जाना जाता है और वो भी हर जगह नहीं मिलता।
0: ये मसला तो है, लेकिन अंगुल आपने देखा होगा कि एक जो मशरूम है वो वही डाल लें जो मिलता है, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर फिर भी कहीं भी मशरूम ना मिले तो, और किसी को अक्सर ये होता है कि जायका भी पसंद नहीं आता है, तो उसमें बीन्स या ऑलिव भी बेहतर नेमुल बदल हो सकते हैं। और आपको मैं बताऊं, सलाद में मुख्तलिफ अकसाम के बीन्स और तोफू तो मैं भी जरूर डालती हूँ, बड़े मजे के लगते हैं।
1: सोफिया, माफी चाहता हूँ, मगर एक और मसला भी है।
0: जी जी बताएं।
1: और वो मसला ये है कि झींगे
0: जी,
1: कुछ लोगों को एलर्जी होती है, किसी को पसंद नहीं होते, तो उनका क्या करें?
0: जी, और किसी को इसकी स्मेल पसंद नहीं होती है। जी जी, मैं खुद कुछ लोगों को जानती हूँ जिनको बिल्कुल ये पसंद नहीं, देखना भी पसंद नहीं करते। लेकिन चिकन जिंदाबाद, उबले हुए चिकन डाल दीजिए। लेकिन अगर सी फूड वाला ही खाना है सलाद, तो फिर मछली डाल लें।
1: भाई सोफिया, कच्ची तो नहीं डाल सकते मछली को हम?
0: बिल्कुल भी नहीं।
1: तो क्या इसे भी झींगे की तरह उबाल लें तो? या और आपने ये तो बताया ना कि मछली कौन सी अच्छी रहेगी?
0: कोई भी मछली जिसका गोश्त सफेद हो, ले लें और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लें चकोर।
1: अच्छा।
0: सोया सॉस, काले मिर्च और नमक डालकर इसको पकाएं और ठंडा करके सर्व करने से कुछ देर पहले ही सलाद पर फैला दीजिए।
1: बहुत खूब, वैसे लगता है कि आज आपने ठान लिया है कि सलाद सामीन से बनवा कर ही छोड़ेंगे।
0: जी बिल्कुल,
1: कोई बहाना नहीं चलेगा कि अज्जा दस्तयाब नहीं थे।
0: जी,
2: ये NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस है। हमारी ये नशरियात पाकिस्तान में रात 9 बजे और भारत में रात 9:30 पर शॉर्ट वेव्स 9440 किलोहर्ट्ज पर सुनी जा सकती हैं।
3: जी सामीन, प्रोग्राम आपने सुना, उम्मीद है जरूर पसंद आया होगा। सामीन, तश्वीशनाक बात यह है कि आजकल जापान समेत दुनिया भर में पहले के मुकाबले में हर उम्र के अफराद में डायबिटीज के मर्ज में तेजी से इजाफा हो रहा है। इसलिए मुतवाजन ग़िज़ा का इस्तेमाल अब बहुत जरूरी हो गया है ताकि इस मर्ज से बचा जा सके। आप भी हमें बताएं कि आप इस मर्ज से बचने के लिए कौन सी एहतियाती तदाबीर अपनाते हैं। इसके लिए हमारी वेबसाइट का पता है nhk.jp/urdu। और अब हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह।